0: जो भजन है, बाकी जो उनकी कीर्तन है, वो सब कुछ उन्होंने वहां किया, बड़े अच्छे तरीके से किया। और रास्ते में जो उनके जो छठी मुबारक के जो कस्टोडियन है दीपेंद्र महंत दीपेंद्र गिरी जी ने बताया, फिर अपने वो अपनी बाइक में जो अभी हम आपको वो भेज रहे हैं, सारी जो भी इस छठी मुबारक के प्रति जो भी धार्मिक मामला है वो सब उन्होंने किए हैं। उन्होंने भूमि पूजन किया, ध्वजारोहण किया, और वो आयोजन होने के बाद वहाँ उनका भोजन भी हुआ। भोजन के बाद वो अभी वहां से निकल पड़े हैं, कुछ 10 या 15 मिनट के बाद वो अभी सूर्य मठ पहुंच रहे हैं। मैं उनसे आगे बढ़ रहा हूँ, अभी मैं भी मठ सूर्य मंदिर जा रहा हूँ, तो वहाँ स्नान होगा, छठी मुबारक का स्नान होगा। उसके बाद वो अगस्त तौर पे श्रीनगर के बिश्ना मकाना
1: वापस लाई जाएगी। जी बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर हम आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे कि जो छड़ी मुबारक, जो वक्त छड़ी मुबारक के फाइनल कल्मिनेशन के वक्त दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें जो उस फाइनल फेज में शामिल होने के लिए क्या नियम जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं?
0: देखिए, जिस तरीके से गौरीशंकर मंदिर के बगल में एक ऐसा एक मुकाम है जहाँ छड़ी मुबारक रहती है, जहाँ ये पूजा पाठ होती है, तो वहाँ भी जो लोकल लोग होते हैं या बाहर से आए हुए, जिसमें आजकल हमने वहाँ देखा है कि जो भी सैया लोग के बाहर के उन्होंने भी वहाँ दर्शन किए हैं। उसके बाद स्पेशली जब मटन आते हैं, उस स्पेशली कश्मीरी पर्दों के लिए वहाँ एक बड़ी भीड़ रहती है, जिनको दर्शन के लिए वहाँ रखा जाता है। कुछ आधा घंटा घंटा पर वहाँ

0: जिसमें पूरे जो पंडित समाज के लोग हैं वहाँ कश्मीरी, वो मटन में इंतजार कर रहे हैं अभी, और उनका वहाँ दर्शन किया जाएगा, और दर्शन करने के बाद फिर जाके वो श्री मुबारक वापस विश्ना मकारा जाएगा।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद तारिक हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप वहाँ जो है हमारे पास और भी अपडेट्स पहुँचाते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता तारिक पहलगाम से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इनकी एक जो क्लिप है जो इन्होंने हमें फॉरवर्ड करी है, हम आपके साथ जो है आपको भी सुनवाएंगे। आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिएगा।
2: पूजा के हवाले से बताइए सर,
3: आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा का दिन है, व्यास पूर्णिमा के नाम से भी ये दिन आज का प्रचलित है, और प्रत्येक वर्ष की तरह परंपरागत हम शिव और शक्ति स्वरूपनी शटिकाओं को, दो छड़ियाँ उनको लेकर दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से पहलगाम पहुँचे, और यहाँ आकर हमने भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, ध्वजारोहण और शटिकाओं का पूजन किया। ये सारे अनुष्ठान छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा के धार्मिक रूप से प्रारंभ होने के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये अनुष्ठान हमने किए, हवन हुआ, जो भी महात्मा और जो भी हमारे साथ श्रीनगर से आए सभी को भोजन हुआ, और इसके पश्चात अब यहाँ से हम मातंड जाएंगे, वहाँ छड़ियों का स्नान होगा, पूजा अर्चना होगी दर्शनार्थ यात्रियों के लिए, और जो मातंड कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है उनके दर्शन के लिए छड़ियों को वहाँ रखा जाएगा, और पूजा के बाद हम मातंड से फिर श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। तो ये गतिविधि है हमारी। मैं आज सुबह चला तो सुबह भी यही चर्चा किया, तो जो महात्मा है, हमारा जो भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म ये इतना समृद्ध है कि ना केवल हम व्यक्ति को प्रेम करते हैं, भगवान से उसकी भगवान में अपनी निष्ठा रखते हैं, बल्कि नदियों, पशु पक्षी, पानी जो हम पीते हैं उसके लिए भी प्रार्थना की जाती है, उसको भी हाथ जोड़े जाते हैं कि हमें ये चीज़ आप उपलब्ध करते हैं। सूर्य चांद, सूर्य हमें ऊष्मा दे रहा है, चांद ठंडक दे, चांदनी जो देता है उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तो हमारे यहाँ एक प्रचलित दोहा है, एक श्लोक है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कि सभी निरोगी हों, सभी सुखी हों और किसी को भी कष्ट ना हो। जब मुख्य यात्रा के लिए जाएंगे पवित्र अमरनाथ जी में श्रावण पूर्णिमा के दिन, आज पूर्णिमा है, अगली पूर्णिमा को जब हम पवित्र गुफा में पहुंचेंगे तो राज्य के साथ साथ देश की समृद्धि और संपन्नता के लिए प्रार्थना करें।
1: जी श्रोताओं, ये थे छड़ी मुबारक के कस्टोडियन महंत दीपेंद्र गिरी जी।

आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बेलगांव 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, हमारे पास एक अपडेट आया है, दर्शन अपडेट 4 बजे का, और आज 4 बजे तक 5,894 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन जो हैं वो प्राप्त कर लिए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या है 3,883, महिलाओं की संख्या है 1,586। जी हाँ, और 136 बालक हैं, 65 साधु हैं, 7 साध्वी और 217 सुरक्षाकर्मी, जिससे कुल संख्या बन रही है 5,894। जी हाँ, आज 4 बजे तक ये दर्शन अपडेट है, 5,894 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन जो है प्राप्त कर लिए हैं।

अमरनाथ यात्रा कश्मीरी मेहमान नवाजी, खूबसूरत नज़ारों और लाजवाब सकाफत का एक अनोखा संगम है। कश्मीर की यही खूबसूरती इस मुकद्दस सफ़र को और भी यादगार बना देती है। इस यात्रा के दौरान आपको यहाँ की कुदरत, लोगों और शॉपिंग के हवाले से कुछ खूबसूरत सी चीज़ें जो है, कुछ खूबसूरत सी बातें जो है आप तक पहुँचाना चाहेंगे। अगर हम देखें तो पहाड़, ठंडे चश्मे और पहलगाम या बालतल के रास्ते आपको कुदरत के हसीन तरीन नज़ारों से रूबरू कराते हैं। सफ़र के दौरान आने वाली ये झीलें और नदियाँ अपनी नीले पानी और खामोशी से रूह को सुकून पहुँचाती हैं। बर्फीली पहाड़ों के बीच बनी गुफा और वहाँ का माहौल बेहद पुरअसर और रूहानी है। श्रोताओं, कश्मीरी लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लोकल पोनी राइडर्स हो, डांडीवालाज हो, वो बहुत ही मुश्किल रास्तों पर यात्रियों को अपनी जान से ज़्यादा हिफाजत से गुफा तक पहुँचाते हैं। कश्मीरी लोग जो हैं वो जगह जगह यात्रियों की सहूलियत और आराम का ख़ास ख्याल रखते हैं। यात्रा के दौरान या वापसी में आप जम्मू कश्मीर के कुछ ट्रेडिशनल चीज़ों की शॉपिंग भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो बस आपको कश्मीर में मिल सकती हैं और बेहद खूबसूरती से जो है आपको पेश की जा सकती हैं। अगर हम देखें तो कश्मीरी पश्मीना शॉल्स जो हैं आप उनकी ख़रीदारी कर सकते हैं। ये हाथों से बुनी हुई शॉलें होती हैं जो अपनी गर्म और नफीस काम के लिए मानी जाती हैं, जानी जाती हैं। आप यहाँ से केसर जो है वो ख़रीद कर ले जा सकते हैं। पांपोर का असली और खुशबूदार केसर जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन केसर माना जाता है। आप इस केसर की शॉपिंग जो है कश्मीर से कर सकते हैं। आप यहाँ के ड्राई फ्रूट्स को ख़रीद सकते हैं। कश्मीर के अखरोट, कश्मीर के बादाम, सूखे सेब जो बिल्कुल ताज़े और लजीज होते हैं, आप जो है अपनी यात्रा के दौरान इनकी भी जो है शॉपिंग कर सकते हैं। आप पेपर मैशी क्राफ्ट्स की अगर हम बात करें तो हाथों से बनाए गए

खूबसूरत रंग बिरंगे बॉक्सेस, बाउल्स और या शो पीसेस जो हैं वो कश्मीरी आर्ट का एक नमूना है। तो आप इन पेपर मैशी आइटम्स को भी जो है ख़रीद सकते हैं, ये भी आपको जो है कश्मीर में आसानी से हर जगह मिल जाएंगी। आप कहवा या कश्मीरी चाय की पत्तियाँ जो हैं वो भी ख़रीद सकते हैं। आप जो हैं अखरोट की लकड़ी से बने हुए ट्रेडिशनल डेकोरेटिव आइटम्स की ख़रीदारी जो है वो भी कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी शॉपिंग के दौरान जो है ख़रीद सकते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए या अपने घर की सजावट के लिए जो है ले जा सकते हैं। तो ये थी कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी ख़रीदारी आप यहाँ जम्मू कश्मीर में अपनी यात्रा के दौरान कर सकते हैं। आप अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम पर। इसके अलावा DTH और न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप, आकाशवाणी आराधना चैनल पर भी हम उपलब्ध हैं।

श्रोताओं, अगर आप अमरनाथ यात्रा पर आ चुके हैं या आने वाले हैं तो आपको कुछ ज़रूरी एहतियाती तदाबीर करने होंगे। जैसे कि अगर आप अपने रेगुलर टेबलेट्स, जो आपकी दवाइयाँ वगैरह हैं, वो आप साथ रख रहे हैं, उनके साथ कुछ और दवाइयाँ भी आपको साथ रखनी होंगी, जैसे कि पेन किलर्स हों, बैंडेड हो, क्योंकि और ऑल्टीट्यूड सिकनेस की जो दवाएं हैं वो आप अपने रेगुलर टेबलेट्स के साथ ज़रूर शामिल करिएगा। इसके साथ साथ ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होने से सरदर्द या उल्टी हो सकती है, ऐसे में आप फौरन रुकें और नीचे आएं। वहाँ मौसम बहुत जल्द ही बदलता है, इसलिए गर्म कपड़े, जैकेट और वाटरप्रूफ ग्लव्स ज़रूर साथ रखें। बारिश से बचने के लिए अच्छी क्वालिटी का रेनकोट या पंचू वगैरह जो है वो आप साथ रखें। मजबूत ग्रिप वाले और वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज़ ही पहनें। जो चप्पल वगैरह है उसका उपयोग बिल्कुल ना करें। अपने सामान और डॉक्यूमेंट्स को प्लास्टिक बैग्स में पैक करें ताकि वो बारिश में बिल्कुल ना भीगें। अपने ग्रुप के साथ रहें और रास्ते में लगे हिफाजती बोर्ड्स के मुताबिक ही चलें। पहाड़ी रास्ते बहुत स्लिपरी होते हैं, इसलिए किसी भी तरह का शॉर्टकट ना अपनाएं। रास्ते में आने वाले जो पॉनीज हैं उनको रास्ता देने के लिए पहाड़ की दीवार के साथ खड़े हों, खाई की तरफ बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं जो प्रिकॉशंस हैं जो आपको अपनाने की ज़रूरत है, और हम आशा करते हैं कि आपकी जो यात्रा है वो बिल्कुल अच्छे से हो और बिल्कुल सुखद और आरामदायक तरीके से सफलतापूर्वक हो। आप अमरनाथ यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम, DTH और न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए।

लाइव्स ऑन ईयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, हमारे पास 5 बजे का दर्शन अपडेट आ चुका है और 5 बजे तक कुल 6,114 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन जो हैं वो प्राप्त किए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या है 4,063, महिलाओं की संख्या है 1,609, 141 बालक हैं, 67 साधु, 7 साध्वी और 227 सुरक्षाकर्मी, जिससे कुल संख्या 5 बजे तक 6,114 बन रही हैं और 6,114 श्रद्धालुओं ने 5 बजे तक आज 5 बजे तक जो है बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, अब आइए आरती सुनते हैं।

0: सत चेत आनंद स्वरूप, देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल, नाथों के नाथ अमरनाथ, बाबा बर्फानी के इस पावन धाम में, मंगल भवन में, सुंदर प्राकृतिक भवन में, दिव्य भवन में आप सभी भक्तजन सायंकालीन आरती में बाबा के धाम में बैठकर बाबा की इस आरती का दर्शन कर रहे हैं, भोले बाबा के धाम का दर्शन कर रहे हैं, बाबा के इस मंगल भवन का दर्शन कर रहे हैं। वास्तव में आप सभी भक्तजन बाबा के कृपा पात्र हैं। आज बाबा की आप पर पूर्ण कृपा हुई है जो आप आज बाबा के धाम में आए हैं और बाबा के धाम में आकर बाबा के इस सुंदर आरती के धाम के दर्शन कर रहे हैं। भोले बाबा का नेक, भोले बाबा के नेक नाम है, बाबा को शंकर कहते हैं। शंकर किसे कहते हैं? शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि शंकर होते इति शंकरः, जो कल्याण कर देते हैं वो शंकर है। और कल्याण भी ऐसे कहते हैं कि बिना सोचे समझे कि भक्त ने मेरी कितनी सेवा की है यह भाव नहीं देखते, बस प्रेम भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से बाबा के धाम में जो आ जाते हैं भोले बाबा उनका मंगल कर देते हैं। बाबा का नाम रुद्र भी है। रुत दुखम द्रावयति नाशयति इति रुद्रः, जो दूसरों के अश्रुओं को हर लेते हैं, जो कष्टों को हर लेते हैं, जो रोगों को हर लेते हैं वह रुद्र है, वह भगवान शंकर है, वह रुद्र है। तो भगवान के नेको नेक नाम है जो बाबा को प्रेम भाव से बजते हैं, श्रद्धा से बजते हैं, विश्वास से बजते हैं और भगवान फिर उनकी स्तुति करना शुरू कर देते हैं। भगवान को और कोई साधन बश नहीं कर सकता। यदि आप प्रेम से बाबा का नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं तो बाबा आपके बश में हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की, बाबा बर्फानी की। तो इसलिए शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामो पयांति ते। गीता जी में ऐसा वर्णन है कि जो भगवान को तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम प्रेम से बसते हैं, प्यार से, प्रीति से बसते हैं, भाव से बसते हैं, उनको भगवान एक ऐसी बुद्धि देते हैं, ऐसा विवेक देते हैं, उस विवेक के माध्यम से व्यक्ति को यह बोध हो जाता है कि मेरा सही मार्ग क्या है, मैंने जीवन में करना क्या है और मेरा कल्याण कैसे होगा, वो भगवान उसको दे देते हैं। पर एक ही शर्त रखी गई है कि तेषां सतत युक्ता नाम, निरंतर प्रेम से भजन करते रहे तो आपको वह ज्ञान आपके भीतर प्रकट हो जाएगा। और जब वह विद्या, जब वह ज्ञान प्रकट हो जाएगा और विद्या या सा विमुक्ताए, और वह विद्या आपको मुक्ति की ओर ले जाएगी, कल्याण की ओर ले जाएगी, आपका मंगल कर देगी। बोले शंकर भगवान। तो ये प्रेम पूर्वक भजन करो, भाव से भजन करो, निश्चित ही कल्याण होगा और आप साधु बन जाएंगे। तो साधु बाबा के भक्त हो जाते हैं जो बाबा को बजते हैं। तो बंधुओं, साधु क्या है? जो जिसमें स हो, अनेक प्रकार के स हो, वह साधु है। जैसे संत जन ऐसा कहते हैं कि पहला स क्या है, वह साधु है जो साधना करे, जो साधना करे, जो तपस्या करे, जिसके हाथ में माला हो, माला का जप करे और बाबा अमरनाथ की यात्रा करे, धाम की यात्रा करे, जिसमें यह स है वह साधु है। दूसरा स क्या है कि जो सावधान हो, वह साधु है कि मनुष्य जीवन मिला है इसको हम व्यर्थ ना गवाएं, मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है, वे उसको बोध होना चाहिए। यदि हमें यह बोध है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य तीर्थों की यात्रा है, तीर्थों का आवागमन है, संतों के दर्शन है, यदि इस बात के लिए वह सावधान है तो वह साधु है। तो ये दूसरा स हो गया। और तीसरा स क्या है कि साधु को सरल होना चाहिए, जो सरल है वह साधु है। और चौथा स कि सार ग्रही, जो सार की बात ग्रहण करे वह साधु है। सार की बात क्या? जैसे अनेक शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, वेद 4 हैं, अनेकों अनेक उप पुराण हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? यदि हम शास्त्रों को पढ़ना शुरू हो जाए तो पूरा जीवन भी पूरे शास्त्रों को, उपनिषदों को नहीं पढ़ पाएंगे, पुराणों को नहीं पढ़ पाएंगे। तो क्या करना चाहिए कि सार को ग्रहण करना चाहिए। सार क्या है? जो पुराणों का सार अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम् के 18 पुराणों का सार क्या है कि कुछ दूसरे के काम में काम आए और दूसरों को कष्ट न दे, परोपकार करें, दूसरों को दुख ना दे, ये सार ग्रही बात है। और सार क्या ग्रहण करना है कि संसार दुखालय है, दाम सुखालय है, सार कष्ट है और बाबा का दाम आनंद है। यह सार जो ग्रहण करता है वह साधु है। बोलिए शंकर भगवान
1: की जय।
0: और स क्या, और साधु में कौन सा गुण होना चाहिए, वो अगला स जो है वो कहा गया है कि साधनोति पर कार्यमिति, वह वो है, वो साधु है जो दूसरों के कार्य को साधे, उसके दुख में काम आए, कष्ट में काम आए, उसके कार्य को सिद्ध करवाए, वह साधु है। तो इस प्रकार से कहा गया है जिसमें यह स स स स स होते हैं, जो इसमें जो गुण किसी व्यक्ति में है, वह यदि कोई पैंट कमीज भी डालता है, पैंट शर्ट भी डालता है, तो पैंट शर्ट डालने वाला वह साधु है। बोलिए शंकर भगवान। तो यह गुण होना जरूरी है। वस्त्र हमने कैसे भी डाले हों, यदि हम साधना नहीं करते, सावधान हम नहीं है, सारग्रही नहीं है और सारभूत बातों को हम नहीं देखते, तो फिर हम साधु नहीं है। इसलिए ये गुण अपने में लाए। और भी अन्य अन्य गुण जो है साधु में होने

चाहिए, उद्देश्य का उसे पता होना चाहिए, कारुण्य भाव उसमें होना चाहिए। दूसरों के दुख को देखकर वह यदि दुखी होता है तो वह साधु है। तो इसलिए बाबा के जो धाम में आते हैं, बाबा ऐसी कृपा करते हैं, ऐसे गुण उनमें स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं, वह व्यक्ति गृहस्थी में रहता हुआ भी साधु भाव को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान। तो बाबा से यही प्रार्थना करें, कार्य हम जो भी करें, बाबा जो है वो निर्देशक हैं, हमें जो उन्होंने काम दिया है दिया हुआ है, हम वह बाबा की सेवा समझते हुए करें। समस्या जब जहां आती है कि मान लो बाबा बोले, बाबा जो है वो डायरेक्टर हैं और हम अपना काम कर रहे हैं, बाबा ने हमें अपने अपने कार्यों में नियुक्त किया है, बात वहां गड़बड़ होती है, समस्या वहां आती है जब हम स्वयं निदेशक बन जाते हैं, स्वयं डायरेक्टर बन जाते हैं, हम सोचते हम कर रहे हैं, अभिमान भीतर प्रकट हो जाता है, अहम भाव आ जाता है, तब व्यक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है। यदि बाबा निदेशक है ऐसा हमें पता हो भगवत कृपा से कि बाबा जैसे करा रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं, जैसे वो चला रहे हैं वैसे हम चल रहे हैं, जैसा वो खिला रहे हैं वैसे हम खा रहे हैं, ऐसा भाव यदि प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही बाबा बर्फानी की कृपा हो जाएगी। बोलिए शंकर भगवान। तो कहने का भाव, ये शिव है, ये आदि मध्य अनंत अनंतानंत है, तो बाबा की कृपा हम पर होती रहे, हम भी साधु भाव को प्राप्त होए, बाबा के चरणों से जुड़े रहे। इस पवित्र भाव से आइए आज की आरती में प्रवेश करते हैं। बोलिए।

0: सर्वाणि च पुष्पाञ्जलि रमया दत्त विहार परमेश्वर
1: श्री अमरनाथाय नमः
0: चरण कमलेशु मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
1: भोले बाबा की आदि परिक्रमा करेंगे। ओम जय
0: तीर्थानि प्रजरन्ति त्रिगाहतानि गंगिणः देघागुंजात्रयोजने वदन्तानि तन्मसि।
1: तो आइए सभी भक्तजन एक साथ बाबा की स्तुति करें। बोले

0: गुरु जनों की
1: जय हो,
0: सब संतों की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के परिवार की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के गणों की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के भक्तों की
1: जय हो,
0: आज के आनंद की
1: जय हो,
0: अमरनाथ स्वामी की
1: जय हो,
0: बाबा बर्फानी की
1: जय हो,
0: काल हर, कष्ट हर, दुख हर, रोग हर, दारिद्र्य हर।
2: शाम के 6 बज रहे हैं। ये विशेष प्रसारण आप यात्रा 2026 के सिलसिले में आकाशवाणी के FM बालतल से सुन रहे थे। FM 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर की आराधना चैनल और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ थे हमारे सहायक इंजीनियर सजाद अहमद गुरकू और मंजूर अहमद नजार, उनके साथ हैं शौकत अहमद खान। मैं आपकी उद्घोषक फरजाना और इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक। इसके साथ ही हमारी आज की ये सभा यहीं पे समाप्त होती है। प्रातः 7 बजे अमरनाथ यात्रा का विशेष प्रसारण लिए आपकी खिदमत में दोबारा उपस्थित होंगे। जब तक के लिए शुभ यात्रा, शुभ रात्रि, जय हिंद।

प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण गंगा पार केवट को उतराई देना चाहते हैं, परंतु केवट अपने प्रभु से सहज भाव से उतराई न लेने की भावना प्रकट करते हैं।

गंगा पार होने के पश्चात भगवान प्रसन्न भाव से केवट को विदा कर भारद्वाज आश्रम संगम नगरी पहुंचते हैं, जहां राम सीता लक्ष्मण व भक्तगण स्नान ध्यान पूजन भजन और कीर्तन कर रहे हैं।

भरद्वाज आश्रम से भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां कुछ आदिवासी स्त्रियां मिलती हैं और सीता से प्रश्न करती हैं। सीता जी लजाकर कुछ इस तरह कह उठती हैं।

उधर भरत जी अयोध्या से प्रभु राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं और राम जी से अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना करते हैं।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: ये आकाशवाणी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: पिछली कड़ी में आप सुन चुके हैं कि किस तरह श्री राम के परम भक्त हनुमान लंका के अशोक वाटिका तक पहुंचते हैं। आप लंका दहन का पूरा प्रसंग भी सुन चुके हैं। इस बीच राम और उनकी सेना समुद्र पार कर लंका पहुंचती है और राक्षस राज रावण की असुर सेना के विरुद्ध युद्ध के लिए मोर्चा संभालती है। अब सुनिए आगे। इस कड़ी के लेखक हैं डॉक्टर राम।

0: अंगद द्वारा रावण के सब समाचार पाकर श्री राम ने अपने सभी मंत्रियों को पास बुलाया और लंका पर आक्रमण की योजना बनाई। वानरों की सेना के 4 दल बनाए गए और इसके लिए उपयुक्त सेनापति भी नियुक्त किए गए। श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करते हुए वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। दूसरी ओर लंका में भी बड़ा कोलाहल मच गया। अहंकारी रावण ने सारा समाचार सुनकर कहा,
1: इन बंदरों की ढिटाई तो देखो, मरने चले आए। राक्षसों की सेना को बुलाओ। ये बंदर काल से प्रेरित होकर ही यहां चले आए हैं। मेरे राक्षस वीर भी न जाने कब से भूखे हैं। लगता है गृह बैठे यहां अरविंद दीना। सुबह सकल चारों दिशे जाऊ, धर धर भालू की सब खाऊ।
2: श्री रामचंद्र महाराज की जय। श्री रामचंद्र महाराज की जय।
0: भयानक संग्राम होने लगा। धरी कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालू गढ़ पर डा रही, झपट ही चरण गहि पटक मही, भज चलत बहुरी पचा रही। वानरों के आतंक से राक्षसों के समूह उसी भांति भाग चले जैसे प्रबल वायु के चलने से बादलों के समूह बिखर जाते हैं। लंकापुरी में हाहाकार मच गया। जब रावण ने अपनी सेना को विचलित होते हुए सुना तो भागते हुए योद्धाओं को लौटाते हुए उसने क्रोध से कहा,
1: सुनो वीर, सुनो जो रण विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतव कराल कृपाना, सर्व सुखाय भोग करि नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा।
3: सचमुच हमें समर भूमि से नहीं भागना चाहिए, रण में लड़ने में ही वीर की शोभा है।
4: शत्रु को ललकारे और वानर भालुओं से भिड़े।
3: कहाँ है अंगद और हनुमान?
1: नल नील और दुर्विंद कहाँ है?
5: श्री रघुवीर की
1: जय।
5: श्री रघुवीर की
1: जय।
3: वो देखो, हनुमान लंका के गढ़ पर कूद कर पहुंचे। अरे एक पर्वत लेकर मेघनाद पर दौड़े।
1: अरे पंजम रथ सारथी निभाता, ताही हृदय महू मानस हिलाता।
3: उधर देखो, उधर देखो, उधर गढ़ पर हनुमान को अकेले जानकर अंगद भी उछल कर गढ़ पर चढ़ गए।
6: दोनों ही हमारी सेना के विरुद्ध क्रोध से लड़ने लगे हैं।
7: हमारी वानर सेना कितनी विकट है। अंगद और हनुमान दोनों ही दुर्ग में प्रवेश कर गए हैं। दोनों लंका को ध्वंस करते हुए ऐसे शोभित हैं जैसे दो मंदराचल पर्वत समुद्र को मथ रहे हैं।
0: इस भयानक संग्राम की कोई तुलना नहीं थी। द्वौदल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मा नहीं हारी।

0: राक्षसों के दो सेनापतियों अकंप और अतिकाय ने अपनी सेना को विचलित देखकर माया की। भय निमिख मह अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरो पलधारा। घने अंधकार को देखकर बानरों की सेना में खलबली मच गई। वे जहां तहां पुकारने लगे, हे राम बचाओ, हे रघुवीर रक्षा करो। तब कृपालु श्री राम ने हंसकर धनुष चढ़ाकर शीघ्र ही अग्निबाण चलाया। उससे तुरंत प्रकाश हो गया। प्रकाश होते ही भालु बलिमुख पाई प्रकाशा, धाये हरख विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनी चर भाजे। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। गरजहीं भाली बलिमुख, रिपु दल बल बिचलाई। इधर तो श्री राम जी की सेना राक्षसों का विनाश कर रही थी, और वहां दसानन सचिव हंकारे, सब सन कहे सी सुभट जे मारे।
1: मंत्रियों, बंदरों ने आधी सेना का संहार कर डाला। अब कहो क्या उपाय करना चाहिए। माल्यवंत
2: जी,
1: आप वयोवृद्ध और हमारे श्रेष्ठ मंत्री हैं, आप ही कुछ उपाय सुझाइए।
3: सुनहु तात कछु मोर सिखावन, जब ते तुम सीता हरि आनी, असगुन होई न जाही बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख कहु न सुख पायो।
1: क्या कहा?
3: तुम नहीं जानते लंकेश, स्वयं कृपालु भगवान पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, जो स्वयं काल रूप हैं, जो दुष्ट रूपी वनों को जलाने में अग्नि की भांति हैं, जो गुणों के धाम और ज्ञान धन हैं, शिव और ब्रह्मा भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे कैसे विरोध किया जा सकता है?
1: मालिवंत,
3: इसीलिए अपनी शत्रुता छोड़कर उन्हें जानकी जी सौंप दो और कृपा निधि परम स्नेही श्री राम का भजन करो।
1: अरे भागे, तू अपना मुंह काला करके यहां से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो मैं स्वयं तुझे मार डालता। जा, अब मेरी आंखों को अपना काला मुंह न दिखला।
3: लगता है तू श्री राम के हाथों अवश्य ही मरना चाहता है। चला जाता हूं, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।
4: पिताजी, प्रातः काल मेरा चमत्कार देखिएगा। अधिक क्या कहूं, बहुत कुछ करूंगा।
1: तो ठीक कह रहा है मेघनाथ, मेरे मन में भरोसा है कि तू जो कह रहा है उसे करेगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है।
5: घोसलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं, जो समस्त लोकों में धनुर्धर प्रसिद्ध हैं? नल, नील, दिवित, सुग्रीव और अत्यंत बली अंगद और हनुमान कहाँ हैं? अपने भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं हठपूर्वक उसे और सबको मारूंगा।
0: मेघनाद ने बड़ा विकराल युद्ध किया। उसके द्वारा अपनी सेना को विकल देखकर पवन पुत्र हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े जैसे स्वयं काल दौड़ता है। उन्होंने एक बड़ा भारी पर्वत उखाड़ लिया और मेघनाद पर डाल दिया। पर पहाड़ गिरते देखकर मेघनाद आकाश में चला गया। उसके रथ, सारथी, घोड़े सब नष्ट हो गए। रघुपति निकट गयो घननादा, नाना भांति करे सी दुर्भादा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काटे निवारे। देख प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना।

0: लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा क्रोध से भरे हुए एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। लक्ष्मण जी के प्रहारों से मेघनाथ प्राण मात्र शेष रह गया। प्राण संकट में देख उसने वीर घातिनी छांडे सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। शक्ति के लगने से श्री लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। हनुमान उन्हें श्री राम के निकट ले आए। छोटे भाई को मूर्छित देखकर प्रभु राम बहुत दुखी हुए। जांबवान के परामर्श से हनुमान लंका गए और वैद्य सुषेण को ले आए। वैद्य ने श्री राम के चरणों में माथा नवाकर हनुमान को पर्वत से औषधि लाने के लिए भेजा। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। मार्ग में रावण द्वारा प्रेरित काल नेमि का वध करते हुए हनुमान पर्वत पर पहुंचे। वहां औषध को न पहचानने के कारण पर्वत को ही उखाड़कर आकाश मार्ग से चले। जब अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंचे तब देखा भरत, विशाल अति निशिचर मन अनुमानी, बिनु फर सायक मारेऊ चाप श्रवण लगितानी।
1: श्री राम
2: जिस भाग्य ने मुझे श्री राम जी से विमुख कर दिया है उसी ने यह भयानक दुख दिया है। यदि मनसा वाचा कर्मणा प्रभु राम के चरणों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो ये वानर पीड़ा से मुक्त हो जाए, इसकी मूर्छा दूर हो जाए।
1: कुशलाधीश
2: हे तात, लक्ष्मण और माता जानकी सहित सुख निधान राम का कुशल समाचार सुनाओ।
1: वनवास के प्रसंग में जब श्री राम जी लक्ष्मण जी तथा माता जानकी के साथ पंचवटी में विश्राम कर रहे थे तो षड्यंत्र रचकर लंकापति रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। फलस्वरूप वानर आदि जातियों की सेना सजाकर श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। उसी युद्ध में मेघनाथ की शक्ति द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। मैं उन्हीं के लिए हिमशिखर से औषधि लेने गया था। प्रातःकाल होने से पूर्व मेरा पहुंचना आवश्यक था।
2: हाँ दैव, मेरा जन्म ही क्यों हुआ, मैं प्रभु के एक काम भी नहीं आया। हे तात, तुम्हें जाने में देर होगी और प्रातः काल होते ही सारा कार्य बिगड़ जाएगा। मेरे बाण पर तुम पर्वत सहित चढ़ो, मैं तुम्हें कृपा निधान राम के पास भेज दूंगा।
1: नहीं प्रभु, आपका प्रताप हृदय में रखकर मैं शीघ्र ही जाऊंगा। आप मेरा प्रणाम स्वीकारें।

आधी रात बीत चुकी, अभी तक हनुमान नहीं आए। हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदैव से ही कोमल रहा है। मेरे लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में शीत

कृष्ण और तिश वायुसेन की। हाँ, वैसा प्रेम अब कहाँ है? मेरे विकल वचनों को सुनकर तुम क्यों नहीं उठते, क्यों नहीं उठते? जो जनते बन बंधु बिछो, पिता बचन मन तेउ नहीं हो। सुत भित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बार ही बारा। अस बिचारी जिए जाग हो ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करिबर कर ही ना। असम जीवन बंधु बिनु तोही, जौ जड़ देव जियावै मोही। हाय हाय, मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा? मेरा कठोर हृदय तुम्हारे शोक को कैसे सहन कर पाएगा? नीच जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा। सौ पैसी मोही तुम्हें ही गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहु तेह जाई, उठ किन मोहे सिखावहु भाई।

0: कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, फिर नींद से जागो भाई, वहां अपनी सेना में सुई जा रही है और तुम्हें नींद क्या रही है, उठो कुंभकर्ण।
1: भाई मुझे कैसे जगाया, तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं?
0: कुंभकर्ण, मारीच की सहायता से मैं अयोध्या के वनवासी राजकुमार राम की पत्नी सीता को हर लाया था। उसी ने वानर सेना लेकर लंका पर चढ़ाई की है। हे भाई, वानरों ने सब राक्षस मार डाले हैं, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया है। दुर्मुख, देवांतक, मनुष्यों को खाने वाली अतिकाय, अकंपन,

0: और महोदराज सभी वीर युद्ध में मारे गए।
1: मूर्ख, जगत जननी का हरण कर तू अपना कल्याण चाहता है, राक्षस राज ये तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे किस लिए जगाया है?
2: भाई, अब भी तू अपना अभिमान छोड़ दे, श्री राम का भजन करे तो तेरा कल्याण होगा। श्री हनुमान जैसे वीर जिसके सेवक हैं, क्या वे श्री रघुनाथ सामान्य मनुष्य है?
0: कुंभकर्ण, ये तुम क्या कह रहे हो?
2: भाई, बहुत बुरा काम किया तूने, पहले ही आकर अपनी बात मुझे क्यों ना सुनाई? तूने तो उस देवता का विरोध किया है जिसके शिव ब्रह्मादि देवता सेवक हैं।
1: अच्छा, तो अब तू अंतिम बार मुझसे भेंट कर ले,
2: मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं और तीनों तापों के दूर करने वाले श्याम शरीर और कमल नयन श्री राम के दर्शन करूं।
0: कुंभकर्ण, अब ये बेकार की बातें छोड़कर रक्षा का कोई उपाय करो।
1: अच्छा राक्षस राज, पहले मेरे लिए आहार लाओ। मदिरा के घट और भैंसों का समूह कहाँ है? आहार लेने के बाद मैं सेना लेकर राम से लड़ने जाऊंगा।
2: ये सामने से कौन चला रहा है?
3: मैं आपका छोटा भाई विभीषण आपके चरणों में प्रणाम करता
1: हूँ। प्रसन्न रहो, कहो कैसे हो?
3: तात, लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा, तहीं गलानी रघुपति पहीं आये हूँ, देख दीन प्रभु के मन भाये हूँ।
1: सुन सुत, भयउ काल बस रावण,
2: सो की मान अब परम सिखावन, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुलभूषण, बंधु वंश ते कीन उजागर, भजेउ राम शोभा सुख सागर।
1: तू मनसा वाचा कर्मणा प्रभु का भजन कर, रावण की बात पर मैं भी काल के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझ रहा है। अच्छा, अब तू जा और मैं भी चला।
4: सबको खा जाऊंगा।
5: अरे दुष्ट कुंभकर्ण, ठहर, मैं इस वार से तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ।
6: अरे ये क्या, ये तो भाई कुंभकर्ण का सिर जान पड़ता है। हाँ भाई कुंभकर्ण, तुम भी रणक्षेत्र में मरण को प्राप्त हुए।
7: हे पिता, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। अभी अपनी प्रशंसा क्या करूं, मैंने अपने इष्ट देव से जो शक्ति और रथ प्राप्त किया है वो अब तक मैंने आपको नहीं दिखलाया, कल देखिएगा।
8: प्रभात होते ही मेघनाद युद्ध भूमि में जा डटा। उसने विविध विध भयानक युद्ध किया। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों से छा दिया। श्री राम की सेना के सभी वीर व्याकुल हो गए। लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि की देह को बाणों से छलनी बनाकर मेघनाद ने श्री राम जी पर आक्रमण किया। उसने बाणों के नागपाश में श्री राम जी को जकड़ लिया। श्री राम भी नट की भांति अनेक प्रकार से कौतुक करने लगे। जब जाम्बवान ने मेघनाद को ललकारा, मेघनाद ने एक पैना त्रिशूल चलाया। जाम्बवान ने उसे बीच में ही पकड़कर मेघनाद की छाती में मारा। वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। इधर देवर्षि नारद ने गरुड़ जी को भेजा। उसने श्री राम के शरीर में लिपटे हुए सभी माया सर्पों को खा लिया। वानर के समूह भी माया से मुक्त होकर हर्षित हो गए। जब मेघनाद मूर्छा से जागा तो पिता को देखकर उसे बड़ी लज्जा आई। वो

0: जय यज्ञ करने की इच्छा से एक पहाड़ की कंदरा में चला गया। तभी विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से आकर कहा,
1: हे अतुल बल वाले प्रभु, मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। यदि ये यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो फिर उसे प्रभु शीघ्र ही जीता नहीं जा सकेगा।
2: अंगद सुग्रीवादी बंधुओं, तुम सब लक्ष्मण के साथ जाओ और उसका यह यज्ञ विध्वंस करो। और लक्ष्मण, तुम्हें उसे युद्ध में मारना। देवताओं को भय से संतुष्ट देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। अपने बल और बुद्धि से इस भांति उस निशाचर को मारना जिससे वह क्षीण होकर मर जाए। हे जामवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों लक्ष्मण के समीप सेना सहित रहना।
3: मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जोते ही आज बधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो, जो सत्संग कर ही सहाई, तदपि हतो रघुबीर दुहाई।

0: इस पापी को मैंने बहुत खेल खिलाया, अब इसे मारूंगा। जय श्री राम।
1: लक्ष्मण कहाँ है? राम राम कहाँ है?
2: तेरी माता धन्य है मेघनाथ, धन्य है। तेरे मुख से मरते समय राम का नाम तो निकला।
3: जब रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ का वध सुना तो वो मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी अपनी छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। नगर के लोग व्याकुल होकर सोचने लगे और सभी रावण को अपशब्द कहने लगे। रावण ने सब स्त्रियों को समझाया कि समस्त संसार

0: नाशवान है, किंतु स्वयं रावण पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरही ते नर न घनेरे। रात बीतने पर सवेरा हुआ और रींच तथा वानर फिर चारों द्वारों पर इकट्ठे हो गए।
1: सुनो, तुम रीछ और वानरों के झुंडों को मत हल डालो, मैं दोनों राजकुमार भाइयों से लड़ूंगा।
2: नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, कहीं विधि जीता वीर भलवाना।
3: सखा सुनो, जिस रथ से विजय होती है वो दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित खोरे, क्षमा कृपा समता रजु चोरे। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतों रिपुताके। मित्र जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्गम शत्रु को भी जीत सकता है।
2: हे कृपाल, हे सुख निधान, इसी बहाने आपने मुझे महान उपदेश दिया। प्रभु मैं धन्य हुआ प्रभु।

0: दशकंदर संभल, अब तेरी मृत्यु समीप आ गई है।
1: जीते हु जे भट संजुग माही, सुनता पस मैं तिन समनाही। रावण नाम जगत ज सजाना, लोक बजा के बंदी खाना। खर दूषण विराद तुम हमारा, बदिर व्याद बाल बिचारा। निश्चर निकर सुबट संघारे हु, कुंभकर्ण घन नाद हे मारे हु। आज बैर सब ले निबाही।
2: जोरण भूप बाजी नहीं जाही, आज करहु खलु काल हवाले, परे कठिन रावण के पाले।

0: बड़ा विकराल युद्ध हुआ। श्री राम जी ने बार बार रावण के सिर और भुजाओं को काटा और वे बार बार उगाए। आकाश में सिर और बाहु जैसे छा गए, मानो असंख्य केतु और राहु हूं। हनुमान, विभीषण आदि सभी के साथ युद्ध करते हुए रावण ने अपार शक्ति और माया का प्रदर्शन किया। वानर सेना का विध्वंस देखकर जांबवान ने रावण की छाती में लात मारी। इससे रावण व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा, उसे मूर्छा आ गई। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में उठाकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। इधर तो ये सब हो रहा था, उधर उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें ये सब कथा सुनाई।
1: हो ये कहा कह से किन माता के विधि मरे ही बिस दुख दाता। कैसे आश्चर्य की बात है कि रघुपति सर सिर कटे हूँ न मरई, पिथ विपरीत चरित सब करही। मोर अभाग्य जियावत ओही, चेहि हूँ हरिपद कमल बिछोही।
2: धीरज रखो राजकुमारी, मुझे पूरा भरोसा है कि हृदय में वाण लगते ही देवताओं का शत्रु मारा जाएगा। देखिए, प्रभु ताते उर हतई नते ही, एही के हृदय बसती बाई दे ही। सुंदरी, संदेह मत करो, सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर हो ही विकल, छुटी जा ही तब ध्यान, तब रावण ही हृदय महु मरे ही राम सुजान। चिंता मत करो, सब प्रकार तुम्हारा कल्याण ही होगा। अच्छा, देर हो रही है, मैं चलूं।
1: अरे तुष्ट चंद्रमा, तुझे शीतल कौन कहता है? तू तो बहुत ही दुखदाई है, और ये रात भी तो नहीं बीत जाती। हाय, शुग संभई सिरा दिन राती। अरे इस समय ये मेरा बायां नेत्र और बाहु कैसे फड़क उठे? क्या क्या ये शुभ शकुन इस बात की सूचना है कि कृपालु श्रीराम जी से शीघ्र भेंट होगी? प्राणनाथ स्वामी,
0: आधी रात को रावण मूर्छा से जागा। उसने सारथी को धिक्कारा। सवेरा होते ही वो रथ पर चढ़कर फिर युद्ध भूमि में आ पहुंचा। फिर बड़ा भयानक युद्ध हुआ। श्री राम जी के बाणों से रावण के शरीर से रुधिर की धारा बह चली। स्रवत रुधिर धायु बलवाना, प्रभु पुनिकृत धनुसर संधाना। 30 तीर रघुबीर पवारे, भुजन समेत सीस मही पारे। काटते ही पुनि भये नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहुबार बाहु सिर हये, काटत झटत पुनि नूतन भये। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। काटे सिर भुज बार बहु, मरतन भट लंकेश। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देख कलेश।
3: शत्रु को जीवित देख देवता सिद्ध और मुनि व्याकुल हो रहे हैं प्रभु।
4: क्या तुम भी भयभीत हो विभीषण?
3: हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, रावण के नाभि कुंड में अमृत का वास है। प्रभु, रावण उसी के बल पर जीवित है।
5: कहा राम, कहा राम रणहतो पुचारी।
6: श्री रामचंद्र महाराज की
0: श्री राम जी के बाणों ने रावण की भुजाएं और सिर मंदोदरी के सामने लाकर गिरा दिए। पति का शीश देखते ही मंदोदरी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। अन्य स्त्रियां रोती हुई दौड़ी, वे मंदोदरी को उठाकर रावण के शव के पास ले गईं।

0: वशीभूत होने के कारण तुमने मेरा भी कहना नहीं माना और चराचर के स्वामी श्री राम को तुमने सामान्य मनुष्य समझा। हे स्वामी, तुम्हारा ये शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने पर तत्पर रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूं।
1: घर की सभी स्त्रियों को रोती हुई देखकर अत्यंत दुख से विभीषण उनके पास गए। भाई रावण की दशा देखकर वे बहुत दुखी हुए। प्रभु राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने विभीषण को धैर्य दिया। प्रभु राम की आज्ञा मानकर देश काल के अनुसार विभीषण ने रावण की सब क्रियाएं की और मंदोदरी आदि स्त्रियों ने रावण को तिलांजलि दी। वे सब मन ही मन प्रभु राम के गुणों का वर्णन करते हुए महलों में चली गईं। तदनंतर श्री राम के आदेशानुसार लक्ष्मण जी, वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जांबवान और हनुमान ने नगर में जाकर विभीषण को सादर सिंहासन पर बैठाकर उनका राज तिलक किया और रीत के अनुसार उनकी स्तुति की। विभीषण का राज तिलक होने के उपरांत सभी वानर विभीषण सहित प्रभु राम के पास आए और श्री राम ने प्रिय वचन कहकर सभी को सुखी किया।

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दें। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।